0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। बैन अल्क्वामी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA के सरबराह ने मुतहदा अरब अमारात में एक हालिया ड्रोन हमले के बाद इस बात का इरादा किया है कि जौहरी पावर प्लांट्स पर हमले नाकाबले कबूल हैं। मुतहदा अरब अमारात के दारुलहुकूमत अबूधाबी में हुकाम ने इतवार को ऐलान किया कि ड्रोन हमले से मुल्क के मगरबी हिस्से में बरका जौहरी बिजली घर के एक इलेक्ट्रिक जनरेटर में आग भड़क उठी। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफायल मारियानो ग्रोसी ने मंगल को अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में सूरत हाल की वजाहत की। उन्होंने प्लांट में तापकारी की सतह को नॉर्मल करार दिया और कहा कि किसी के जख्मी होने की कोई इतला नहीं है। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि चूंकि बिजली घर फाल हालत में है, बराह रास्त हमला माहौल में तापकारी के बहुत ज्यादा इखराज का सबब बन सकता है। ग्रोसी ने यूक्रेन और ईरान में जौहरी तनसीबात का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि जौहरी बिजली घरों को बैन अल्क़वामी इंसानी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। G7 यानी ग्रुप ऑफ सेवन के वज़राए खजाना और मरकजी बैंकों के गवर्नरों के दो रोजा मुज़ाकरात पेरिस में इख्तिताम पजीर हो गए हैं। उन्होंने एक एलामिया जारी किया है जिसमें ईरान जंग से पैदा होने वाले इक्तसादी खतरात और मस्नूई जहानत या AI के नए मॉडल्स से लाहक होने वाले खतरात से निमटने के लिए तआवुन पर जोर दिया गया है। बयान में ये बात जोर देकर कही गई है कि ईरान से मुतल्लिका सूरत हाल के सबब इक्तसादी तरक्की और इफरात जर के हवाले से खतरात बढ़ गए हैं। बयान में क्लॉड मेथोस जैसे आला कारकर्दगी के हामिल नए AI मॉडल्स और उनसे मालियाती निजामों को लाहक होने वाले खतरात का जिक्र भी किया गया है। G7 ने कहा है कि मालूमात के तबादलों में इजाफा करने और बेहतरीन अमली तरीकों की निशानदेही करने के लिए काम किया जाएगा। G7 ने बज़ाहर चीन का हवाला देते हुए कलीदी मादनियात पर बिला जवाज जगतरफा बरामदी पाबंदियों के बारे में भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि इनसे आलमी सप्लाई चेन में खलल पड़ता है। ममालिक का यह ग्रुप G7 के अराकीन और हम ख्याल शराकत दारों के दरमियान सप्लाई चेन को मतनव्वे बनाने के लिए तआवुन को गहरा करने और वसत देने का इरादा रखता है। निजी शोभों को भी मंसूबे में शामिल किया गया है। यूनिफिकेशन चर्च के नाम से मारूफ मजहबी ग्रुप के लिक्विडेटर यानी तस्वीयाकार ने जापान में इस ग्रुप के मुतासरीन से जरे तलाफी की दरखास्तें कबूल करना शुरू कर दी हैं। मार्च में टोक्यो हाईकोर्ट के फैसले में मुल्क के इस ग्रुप की मजहबी कारपोरेशन की हैसियत कलदम हो गई थी। अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा लिक्विडेटर अब अगला कदम उठा रहा है। लिक्विडेटर बुध के रोज से अगले एक साल तक जरे तलाफी की दरखास्तें कबूल करेगा। तस्वीयाकारों की टीम का कहना है कि उसने ग्रुप के असासों में से कम अज कम 40 बिलियन येन या तकरीबन $250 मिलियन जब्त कर लिए हैं। टीम के मुताबिक ये रकम तंजीम के मालिक खातों से मुतल्लिक लेन देन को मुअत्तल करके हासिल की गई है। तवक्को है कि ज़र तलाफी के लिए दरखास्तें देने वालों में वो लोग शामिल होंगे जिन्हें ग्रुप के रूहानी कारोबार से नुकसान पहुंचा था और वो अफराद भी जिन्होंने बड़े बड़े अतियात दिए थे। लिक्विडेटिंग टीम का कहना है कि वो मुतासरीन को मुआवजा देने के लिए मजीद रकम हासिल करेगी और ये फंड्स ग्रुप की मलकियती ऐसी जायदादों की फरोख्त से हासिल किए जाएंगे जो फिलहाल ज़र इस्तेमाल नहीं है। टीम ने कहा है कि एक साल की मुकर्रा मुद्दत के बाद जरे तलाफी के दावे कबूल नहीं किए जाएंगे। मुबसरीन का ख्याल है कि ये मुतासरीन के लिए मुआवजा वसूल करने का आखिरी मुमकिन मौका होगा।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नजर। जापान की वजीर आजम ताकायची सनाए और जनूबी कोरिया के सदर ई जे म्यून ने जनूबी कोरिया में मुलाकात की है। रहनुमाओं ने खित्ते में तवानाई की फराहमी को मजीद पायदार बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। इसमें पूरे हिंद बहरुल काहिल खित्ते के लिए जखीरे को बढ़ाना शामिल है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने के इम्कान का इरादा करते हुए इंदिया दिया है कि वो आने वाले दिनों में मुजाकरात में ईरान के रद्दअमल पर नजर रखने का इरादा रखते हैं। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं। मजीद खबरों, तबसरों और तजियों के लिए आप जब चाहें विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu

0: これもいいですね。
1: それは縁結びのお守りです。800円になります。
2: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
0: じゃあこれをください。
4: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
5: ताम एक छोटी सी घंटी वाले तावीज को हाथ में लेकर कहती है,
0: これ可愛いお守りですね。
4: ये बहुत प्यारा तावीज है ना?
5: मिया उसे तफा करते हुए जवाब देती है,
3: होंतों, कवाई।
4: वाकई बहुत प्यारा है।
5: ताम एक और तावीज की जानिब मतवज्जा होती है,
0: これもいいですね。
4: ये भी अच्छा है।
5: अमले की फर्द उसे तावीज के बारे में बताती है,
1: それは縁結びのお守りです。
4: वो एन मुसुबी यानी रिश्ता बंधन का तावीज है।
1: 800 円になります。
4: उसके 800 円होंगे।
5: ताम को अमले की फर्द की बात पूरी तरह समझ नहीं आती।
2: एन मुसु।
5: मिया उसे समझाती है।
3: एन मुसुबी, कोई भी तगड़ा किरो मामूरी।
4: एन मुसुबी, बंधन में बंधने का तावीज।
5: ताम अमले की फर्द को तावीज देने का कहती है।
0: जा, कोरे ओ कुदासाई।
4: अच्छा तो फिर ये दीजिए।
5: वहाँ मौजूद कई तावीजों में से ताम ने रिश्ता बंधन वाले तावीज का इंतखाब किया।
4: आइए आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
0: これ可愛いお守りですね。
3: 本当可愛い。
0: これもいいですね。
1: それは縁結びのお守りです。800円になります。
2: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
0: じゃあこれをください。
5: आज के सबक का कलीदी जुमला है, बहुत प्यारा तावीज है ना?
0: कवाई ओ मामोरी देस ने।
5: अगर आप इसे याद कर लें तो किसी चीज के बारे में अपने तासुर का इजहार कर सकते हैं।
4: अब हम आज के कलीदी जुमले की तशरीह करते हैं। कवाई इसमें सिफत है, इसके मानी है प्यारा। ओ मामोरी तावीज को कहते हैं। देस जुमले के इख्तिताम को शाइस्ता बनाने वाला लफ्ज है, और जुमले के बिल्कुल आखिर में ने उस वक्त लगाते हैं जब आपको तवक्को हो कि मुखातिब आपके एहसासात से इत्तेफाक करेगा। आज का नुक्ता इसमें सिफत के बारे में है। कवाई की तरह जो इसमें सिफत ई पर ख़त्म होते हैं उन्हें ई इसमें सिफत कहा जाता है। इसमें सिफत को जिस इस्म से पहले लगाया जाता है वो उसकी सिफत बयान करते हैं। मसलन कवाई ओ मामोरी यानी प्यारा तावीज़।
5: लेकिन अनवर साहब, मियाँ ने तो कोई इस्म इस्तेमाल ही नहीं किया, उसने तो सिर्फ यूँ कहा हों तो कवाई यानी वाकई बहुत प्यारा है।
4: जी हाँ, ये भी ठीक है, क्योंकि ई इसमें सिफत अकेला भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे प्यारा यानी कवाई, इसके साथ देस ने लगाकर कवाई देस ने कहा जाए तो ये ज्यादा शाइस्ता होगा। आज के मकालमे में ताम ने एक और तावीज़ के लिए कहा था, कोरेमो ई देस ने यानी ये भी अच्छा है। इसमें ई यानी अच्छा भी ई इसमें सिफत है।
5: अब वक्त हुआ है मश का, तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
6: कवाई कवाई देस ने, कवाई ओ मेमोरी देस ने।
5: जी सामीन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
4: अब एक मुख्तसर मकालमा सुनिए जिसमें तहाइफ की दुकान में मौजूद एक टी शर्ट के बारे में गाहक अपना तासुर बयान कर रहा है।
7: मीते कोनो टी शर्ट्स
8: ओमोशिरोई देसु ने।
4: अब इस मकालमे की तशरीह।
7: मीते कोनो टी शर्ट्स,
5: देखो ये टी शर्ट।
4: मीते ये फेल मीरू यानी देखना की ते शक्ल है, जो किसी से कुछ करने के लिए कहने का बेतकल्लुफाना अंदाज है। कोनो के मानी है ये, और टी शर्ट दरअसल टी शर्ट का जापानी तलफ्फुज़ है।
8: ओमोशिरोई देसु ने,
5: दिलचस्प है ना।
4: इस जुमले में भी एक ई इसमें सिफत ओमोशिरोई यानी दिलचस्प इस्तेमाल हुआ है, और ने अपनी बात की तायीद चाहने का एक अंदाज है।
5: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
6: ओमोशिरोई ओमोशिरोई देसु ने।
4: और अब अपना तासुर बताने की मशक। फर्ज कीजिए आप किसी बेकरी में हैं जो मज़ेदार डबल रोटी के लिए मशहूर है। वहाँ आप तवक्को से बड़ी डबल रोटी देखकर हैरान रह जाते हैं। हैरानी के इस तासुर के लिए आप कहेंगे इतनी बड़ी, तो बड़ी को कहते हैं
6: ओकी ओकी।
4: सामीन कोशिश कीजिए।
7: ओकी देसु ने ओकी देसु ने।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 20 मई बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला जैन और वायला खवानो से सुने समाचार। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाए और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ई जे म्योन के बीच दक्षिण कोरिया में शिखर वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की ऊर्जा आपूर्ति को अधिक मजबूत बनाने, विशेष रूप से संपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र का भंडार बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। यह वार्ता मंगलवार को ई जे म्योन के गृहनगर आंदोन में आयोजित हुई। दोनों की आखिरी मुलाकात जनवरी में जापान में हुई थी। ताकाइची ने बैठक में कहा कि खास तौर से पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस समय बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। मेरा मानना है कि राष्ट्रपति ई जे म्योन और मेरे नेतृत्व में जापान और दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों को सकारात्मक गति से आगे बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाएं। बाद में दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित किया। ताकाइची ने कहा कि वे पश्चिम एशिया में स्थिति को शांत करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए, जिसमें होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की स्वतंत्र और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना भी शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों को साझा करने सहित ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। ताकाइची ने आगे कहा कि वे इस समझौते के विवरण पर काम करेंगे। इस बीच ई जे म्योन ने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए अमेरिका और हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमला करने की संभावना को दोहराते हुए यह भी संकेत दिया है कि वे आगामी दिनों में बातचीत के दौरान ईरान की प्रतिक्रिया पर नजर रखने की योजना बना रहे हैं। संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से चल रही वार्ता का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, क्योंकि ईरान ने किसी भी सैन्य आक्रमण का सामना करने की अपनी तत्परता का संकेत दिया है। ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौता करने के लिए मिन्नतें कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है कि हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि हमें उन्हें एक और बड़ा झटका देना पड़े। अमरीकी राष्ट्रपति ने यह भी संकेत दिया कि वे सीमित समय के लिए ईरान की प्रतिक्रिया पर नजर रखेंगे। इस बीच ईरान के विदेश उपमंत्री काजेम गरीबाबादी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि अमेरिका के अनुसार उसने बातचीत को मौका देने के लिए ईरान पर हमले अस्थायी रूप से रोक दिए हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका यह भी कह रहा है कि वो किसी भी क्षण बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह एक धमकी को शांति का अवसर बताने जैसा है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान एकजुटता और दृढ़ता से किसी भी सैन्य आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार है।
1: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: संयुक्त अरब अमीरात पर हालिया ड्रोन हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने दोहराया है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अस्वीकार्य हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के अधिकारियों ने रविवार को घोषणा की कि ड्रोन हमले के कारण देश के पश्चिमी हिस्से में स्थित बराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक विद्युत जनरेटर में आग लग गई। IAEA के महानिदेशक रफायल मारियानो ग्रोसी ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक में स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने संयंत्र में विकिरण के स्तर को सामान्य बताया और कहा कि किसी के घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि संयंत्र काम कर रहा है, इसलिए हमला होने पर रेडियोधर्मी विकिरण का बहुत अधिक रिसाव हो सकता है। ग्रोसी ने यूक्रेन और ईरान

0: में स्थित परमाणु संयंत्रों का उदाहरण देते हुए इस बात पर जोर दिया कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत संरक्षित हैं। G7 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों ने पेरिस में अपनी 2 दिवसीय वार्ता समाप्त कर ली है। उन्होंने एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर ईरान संघर्ष से उत्पन्न आर्थिक जोखिमों और नए AI मॉडलों से पैदा खतरों से निपटने के लिए सहयोग का आह्वान किया है। वक्तव्य में जोर दिया गया है कि ईरान संघर्ष के चलते आर्थिक विकास में बाधा और मुद्रास्फीति के जोखिम बढ़ गए हैं। वक्तव्य में क्लॉड मिथोस जैसे उच्च क्षमता वाले नए AI मॉडलों और वित्तीय व्यवस्थाओं को उनसे होने वाले खतरों पर भी बात की गई। G7 ने कहा कि सूचना साझा करने के प्रयास बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीके ढूंढने के लिए वो काम करेगा। G7 ने महत्वपूर्ण खनिजों पर मनमाने निर्यात प्रतिबंधों पर भी चिंता व्यक्त की। उसका कहना है कि ये प्रतिबंध वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हैं। ऐसा लगता है कि ये बात चीन के संदर्भ में कही गई। समूह आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए G7 देशों और समान विचारधारा वाले साझेदारों के बीच सहयोग मजबूत करने तथा बढ़ाने का इरादा रखता है। इस योजना में निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। यूनिफिकेशन चर्च के नाम से ज्ञात धार्मिक समूह के परिसमापक ने जापान में संगठन के पीड़ितों से मुआवजे के लिए आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। टोक्यो उच्च न्यायालय ने मार्च में इस समूह को देश में धार्मिक निगम के तौर पर भंग करने का आदेश दिया था। न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक अब अगला कदम उठा रहा है। परिसमापक बुधवार से 1 वर्ष तक मुआवजे के लिए आवेदन स्वीकार करेगा। परिसमापन दल का कहना है कि उसने समूह की कम से कम 40 अरब येन यानी लगभग $25 करोड़ की धनराशि जब्त कर ली है। दल ने बताया कि उसने संगठन के वित्तीय खातों से जुड़े लेन देन रोक कर ऐसा किया है। मुआवजे के लिए आवेदन करने वालों में वे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें समूह की आध्यात्मिक चीजें जबरन बेची जाने के कारण आर्थिक नुकसान हुआ और जिन्होंने बड़ी मात्रा में दान दिया था। परिसमापन दल का कहना है कि समूह की वर्तमान में उपयोग न होने वाली अचल संपत्तियां बेचकर भी पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए और अधिक धन जुटाया जाएगा। दल ने स्पष्ट किया है कि 1 वर्ष की निर्धारित समय सीमा के बाद मुआवजे के आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पर्यवेक्षकों का मानना है कि पीड़ितों के लिए मुआवजा प्राप्त करने का ये संभवतः अंतिम अवसर होगा।
1: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर, जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सनाए और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ई जे मियोन के बीच दक्षिण कोरिया में शिखर वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की ऊर्जा आपूर्ति को अधिक मजबूत बनाने, विशेष रूप से संपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र का भंडार बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।